0: जिनको नजर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे जाई पे रखे आप तेसरे जयंती उपाय कै देख था पी था किसनु कहिया नानका सब किसी आपे आप पौड़ी बड़े के बड़े आई।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कह जह कोट इंद्र इंद्राण साह साहाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत प्रभ दातौ दातार पर्यौ जाचक इक सरना मिलै दान संतरीन जेह लग भव जल तरना बिनत करौ अरदास सुनहौ जे ठाकुर पावै देह दरस मन चाउ भगत एहो मन ठहरावै बलियो चराग अंधियार मह सब काल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म सतगुर खीमा ताणिया जुग जूथ समाणे अनभउ ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे इहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने गुर मेल गुर सिख संध पहे ब्रह्मासन विश्राम राम नाम गुरमुख पहे गुरमुख रमता राम गुरमुख रमता राम नाम गुरमुख प्रगटायो शब्द सुरत गुर ज्ञान ध्यान गुर गुरु कहायो दीप ज्योत मिल दीप ज्योत जग मग अंतर उर गुरमुख रमता राम
ਸੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਭਏ ਗੁਰ ਸੋ ਕਹਾਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰ ਸਹੁ ਝਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾ ਦਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸਿਰ ਸਹਾ ਦਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ

आए मेटे पपाखिया सब अंदर एक वरतै किने विरले लाखिया जन नानक पए निहाल प्रभ की पाखिया।

नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत खा। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.

भगत तेरे भगत सलाहन तुद जी हरन का नेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़े ब सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खड कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करे सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जानाई है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंख जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबिया ले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ नहा जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिंतु नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा किता न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा जप तप संजम धर्म न कमा

जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम मा,

संतः मन पवन सुख बनया, किस जोग प्राप्त गनया। रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मिटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। कुंभ कमल जल भरिया, जल मिटिया

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दू गवायो, जो चाहत सो ही मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पा।
1: सलोक पवन गुरु पाणे पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया, खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।